कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रियान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: नमस्कार, मी महेश काळे. तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा.
1: एक कोने में था बैठा जब मुझे वो दिखी थी, वो सबसे अलग थी, वो सबसे हंसी. आंखें मेरी फिर उसकी आंखों से जा मिली, एक बारी दो बारी फिर निकली हंसी. एक हाथ हवा विच दूजे च गिलास, ते मेनू नहीं पता सी गिलास च की. बट हौली हौली लक नु घुमा के नचदे लगे सो सेक्सी.

बंध दो प्रकार के होते हैं, कर्म का बंध, एक व्यक्ति का बंध है। कर्म बंध करने वाले व्यक्ति जाने अनजाने रिश्तों का बंध कर लेते हैं, और रिश्तों का बंध करने वाले व्यक्ति एक अलग राह पर चल पड़ते हैं। आपने कभी देखा होगा बेल लता किसी पेड़ को घेर लेती है, उस तने के बल पर कई बार वो पेड़ से भी और ऊंची उछल जाती है। उसके पास वो बल नहीं है कि वो सीधी जा सके, लेकिन कोई पेड़ का आलंबन मिल गया तो आराम से जाती है। इसी को कहते हैं व्यक्ति का बंध, भक्ति का बंध, आसक्ति का बंध है। एक भक्ति का बंध है। सुधर्मा स्वामी प्रभु महावीर की वो लता है, वो वेल है, जिन्होंने भगवान महावीर के अंतरंग को चारों तरफ से घेर लिया, और ऐसे घेर लिया, ऐसे घेर लिया कि सामर्थ्य नहीं लेकिन उस ऊंचाई पर पहुंच गए। और ये व्यर्थ ही उनकी अनुभूति से जन्मी हुई शक्ति की बात हमने कल देख रहे थे लंबे समय से, और सुधर्मा स्वामी के अनुभूति में एक नया डायमेंशन, एक नया आयाम खुला। बोलिए शक्ति की बात हो गई, लेकिन शक्ति के साथ यदि कल्याण की प्रज्ञा न होती, समृद्धि की प्रज्ञा न होती, विश्व रक्षा की प्रज्ञा न होती तो क्या यह संभव था तीर्थंकर होना? तो उन्हें लगा नहीं, संभव नहीं था। और उन्हें लगा कि भगवान महावीर के जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, शील, शक्ति, इनके साथ और एक बात तीर्थंकर महावीर के पास है जो बहुत गजब की है, इतनी गजब की है। और उसको उन्होंने बार बार एक शब्द दिया है, जग भूई पन्ने। यहां फिर उसी भूई पन्ने की चर्चा कर रहे हैं। और कैसी प्रज्ञा इसके पहले आप सुन चुके हो, आज जब वो सुमेरु पर्वत की चर्चा करते हुए, अनुभूति करते हुए परमात्मा की शक्ति के सुमेरु पर्वत को अनुभव करने के बाद उन्हें लगा कि परमात्मा की जाति भी सुमेरु पर्वत है, परमात्मा का वेश भी सुमेरु पर्वत जैसा है, परमात्मा का ज्ञान, दर्शन, शील भी सुमेरु पर्वत जैसा है, लेकिन परमात्मा की जो प्रज्ञा है, कल्याण की प्रज्ञा, वो केवल सुमेरु पर्वत जैसी नहीं है। सुमेरु पर्वत जैसी है लेकिन उतनी ही नहीं है, जो सुमेरु पर्वत में नहीं है ऐसा भी कुछ उनमें है। और उसी की अनुभूति को अभिव्यक्त करते उन्होंने कहा।

ने मुनियों के मध्य में जो मौन को उपलब्ध हो गए उनके बीच में, जिनके अंदर में से सारे विचार समाप्त तो हो गए उनके बीच में, जिनके अंदर कोई विकार न बचा उनके मध्य में, कैसे तीर्थंकर महावीर क्या महसूस कर रहे हो? पर्वत में एक पर्वत आता है निषद पर्वत, और निषद पर्वत ऊंचाई में, सुमेरु पर्वत ऊंचाई में 1,00,000 योजन का है, लेकिन निषद पर्वत ऊंचाई में 1,00,000 योजन से भी अधिक ऊंचा है, उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन उसकी चौड़ाई, उसका राउंड सुमेरु पर्वत जितना नहीं है। सुमेरु पर्वत का राउंड क्षेत्रफल वो निषद पर्वत से ज्यादा है, लेकिन निषद पर्वत सुमेरु पर्वत से अधिक ऊंचा है। और सुधर्मा स्वामी को महसूस हुआ कि परमात्मा की जो कल्याण की प्रज्ञा है वो निषद पर्वत से भी अधिक ऊंची है, और उतनी ऊंची होकर के भी घेरा जो है, वलय जो है, विस्तार जो है, व्यापकता जो है, वो सुमेरु पर्वत से भी अधिक है। इसलिए दोनों पर्वत साथ में ले आए, इसको समझेंगे। कई लोग ऊंचा देखते हैं, बहुत ऊंचा देखते हैं, जैसे नारियल का पेड़, जैसे सुपारी का पेड़, वो सीधा ऊंचा जाता है, जैसे देवदारू का पेड़, जैसे सागवान का पेड़, ये क्या है, केवल ऊंचे चले जाते हैं लेकिन चौड़े नहीं होते। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं लेकिन व्यापकता नहीं हो पाती है, विराट नहीं बन पाते, उत्तुंग हो जाते हैं लेकिन विराट नहीं होते। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत व्यापक होते हैं, बहुत विराट होते हैं, सबको अपने में समा लेते हैं लेकिन ऊंचाई में बहुत बौने हो जाते हैं, उत्तुंग नहीं हो पाते। इन दोनों को एक साथ संभाना कि सबको लेख, सबको समाना भी और ऊंचा भी होना है, एक कसौटी है। सबको साथ में लेकर के चलने वाला व्यक्ति ऊंचा नहीं हो पाता है, और ऊंचा होने वाला व्यक्ति सबको साथ में लेकर चल नहीं पाता। ऐसा हम सभी का अनुभव, आप किसी को भी उठा करके देखेंगे कि जो व्यक्ति सबको लेकर के चलता है वो फिर उसको कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते, तड़जोड़ करनी पड़ती है, सबके साथ चलना पड़ता है। और जो अपने ही रोह में चलते हैं, अपने रोह में चलते हैं, वे ऊंचे तो हो जाते हैं लेकिन फिर सब लोग उनके साथ नहीं रहते, वो अकेले हो जाते हैं। अकेला कौन होता है? जो सबको साथ में लेकर नहीं चल पाता है वो अकेला हो जाता है। अपने आप में ऊंचे हो गए वो। यदि महाराष्ट्र वालों को एक नाम दो, स्वतंत्र वीर सावरकर, आप देख सकते हैं कि उनके विचारों की ऊंचाई, उनके तत्व ज्ञान की ऊंचाई, उनके वक्तृत्व की ऊंचाई, उनके पुरुषार्थ, उनका पराक्रम कि समुद्र में छलांग लगा दे, सागरा प्राण तरमल, इतनी ऊंचाई, लेकिन सबको साथ में लेकर के चलने का हौसला नहीं। उनके जीवन का यदि एक प्रसंग सुनोगे, कितने वो एकाकी थे। उनकी सहचारिणी जो उनके साथ, ऐसे व्यक्ति के साथ लंबे समय तक जी, अंतिम समय में उसको हॉस्पिटलाइजेशन किया है और वहां उसका आयुष्य पूरा हो गया। सावरकर घर पर ही है,
और उनके पास समाचार आए तो उनका तिथुनच वैकुंठ धाम मध्ये घेऊन जा, घरी आणण्याची आवश्यकता नाही. क्या फील करोगे? उतुंग है, बहुत उतुंग है, लेकिन विस्तार नहीं. तीर्थंकर महावीर की ओर भी देखेंगे आप, सुधर्मा स्वामी क्या महसूस करते हैं, वो थोड़ी सी झलक आपको भी आनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए. एक वो एक और इतने उतुंग इतने उतुंग इतने उतुंग इतने उतुंग इतुंग उतुंग कि गांगे अनगार आकर के क्वांटम फिजिक्स के अगले सवाल पूछता है, जिसको आज तुम क्वांटम फिजिक्स कहते हो ना, उसके अगले सवाल पूछता है. इतने भांगे इतने विकल्प इतने ऑप्शन, और सारे ऑप्शन किसको लेकर? पुद्गल परमाणु को लेकर. किसको लेकर? पुद्गल परमाणु को लेकर के, कि इतने प्रदेश का यदि पुद्गल परमाणु है तो पुद्गल स्कंद है तो उसमें कितने कितने परमाणु होंगे, क्या प्रदेश कितने आकाश प्रदेश को स्पर्श करेगा, क्या उसके 3 पैसे 4 पैसे 5 पैसे 10 पैसे अनंत पैसे संख्या पैसे. इतने गांगे अनगर के भांगे भगवती सूत्र में कि उसको पढ़ते पढ़ते लगता है कि क्या पूछ रहा है फालतू का, कुछ बल्ले ही नहीं पढ़ता. लेकिन उसको भी परमात्मा महावीर आराम से लेते हैं. रायवंत आया, अर्जुन माली आया. अब अर्जुन माली के पास कोई गांगे अंगने भांगे थोड़े, उसका कोई बुद्धि का विकास उतना नहीं है, उसको भी समा लिया. दोनों के साथ कैसे समाना है? आओ थोड़ा सा और नजीक आ जाए, जिसलिए आपको जल्दी समझ में आ जाए. आचार्य भगवंत के पास छोटा बच्चा आता था, गुरुदेव उसके साथ कैसे बात करते थे? ऐसे करते थे. और कोई पढ़ने के लिए आ गया, विशेष औषध भाष्य रत्नाकर अवतारिका, तो बिल्कुल अलग हो जाते थे. कोई जवान आ गया तो जवान के साथ, कोई साथ भक्त आ गए तो उसके साथ संगीत आया था, संगीत के साथ न्याय आया था, न्याय के साथ तर्क आया था, तर्क के साथ उर्दू वाला था, उर्दू के साथ अरबी आया था, अरबी के साथ इंग्लिश आया था, इंग्लिश के साथ. किसी को नहीं लगता था ये तो अपने साथ नहीं चल पाते, अपन इनके साथ नहीं चल पाएंगे, कैसे संघ का निर्माण कर पाए? संप्रदायों को विलीन करा करके संघ का निर्माण करना आज चुनौती हमारे पास है, कि संघ को बनाए रखना. और उस समय उन्होंने संघ बनाया और चलाया, इसी आधार पर चलाया, ऊंचे भी थे और सबको साथ में लेकर के भी चलते थे. और ये कला जिनमें होती है वही युग का निर्माण कर पाते हैं, वही युग को चेंज कर पाते हैं. केवल ऊंचे विचार और ऊंचा कर्तृत्व वाला व्यक्ति नहीं कर पाता है. और एक एग्जांपल दे दो, बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. नरेंद्र मोदी बहुत उत्तम है ना? दूसरे को बोनेपन का ही एहसास कराता है. सारे जितने भी उनके कैबिनेट में भी मिनिस्टर हैं, कोई उनके सबको क्या बना कर रखा, परिणाम क्या होता है? यदि इतिहास पढ़ा हो तो सेकंड वार हुआ था, है ना, विश्व युद्ध हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वार. और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे चर्चिल, और चर्चिल के नेतृत्व में वो युद्ध ब्रिटेन ने जीता था, गजब के कूटनीतिक थे. लेकिन ताजुब के बाद कि उस चुनाव युद्ध होने के बाद जब चुनाव हुआ तो चुनाव में चर्चिल हार गए, चर्चिल हार गए. उतुंग थे लेकिन सबको साथ में लेकर के चल नहीं पाए. और कई लोग सबको साथ में लेकर के चलते रहते लेकिन फिर वो एवरेस्ट पर नहीं जा पाते, फिर ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाते.
ये दोनों को बड़ा ये कोई कर सका तो छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी समर्थ रामदास, ज्ञानेश्वर माउली, संत तुकाराम, प्रज्ञा कितनी उत्तुंग उनकी। लेकिन वारकरी के साथ हमेशा पंढरपुर के बारे में जाए तो लगे कि भाई ये वारकरी थे। इतनी सरलता, इतनी सहजता, इतनी सदाशयता कि किसी व्यक्ति को लगे ही नहीं कि बहुत बड़े और अंदर में पूरे उस श्रेष्ठता को टच करते हैं। इन दोनों को एक साथ निभाना सोचो बोला, थाने चार जना ने साथे लेवनो चालनो पड़े तो कितनो समझौतो करना पड़े, कितना समझौतो करना पड़ा, कितना अपना संकल्प, कितना अपना सपना, कितनी अपनी पॉलिसी छोड़नी पड़े। और अपनी पॉलिसी न छोड़ते हुए वो ऊंचाई पर चलना, एक प्रसंग हो तो बहुत जल्दी बात समझ में आ जाएगी। मोती ऋषि जी महाराज साहब गुरुदेव के बिल्कुल राइट हैंड थे, घटकोपुर चतुर्मास चल रहा था, रात्रि के समय उनको तबीयत बिगड़ी, पैरालिसिस का अटैक आए, डॉक्टर आए चेकअप करने के लिए, चेकअप कर रहे हैं, जब तक वो चेकअप कर रहे हैं गुरुदेव कुछ नहीं बोले। अब चेकअप करने बाद डॉक्टर क्या करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, टाइम रात का। अब डॉक्टर को ही पता है कि दवा लेंगे नहीं, खाएंगे नहीं, तो इंजेक्शन की तैयारी करी उसने। जैसे उसने इंजेक्शन की तैयारी करी, गुरुदेव ने कहा डॉक्टर साहब इंजेक्शन नहीं दे सकते, इंजेक्शन नहीं दे सकते। वो डॉक्टर देखे गुरुदेव की तरफ, गुजराती था वो डॉक्टर, उसने पूछा गुरुदेव तुम्हें इमने मारवा मांगो छो, तुम इसको मारना चाहते हो? बोले नहीं हम इसको मारना नहीं चाहते, बोले आप ट्रीटमेंट की मना कर रहे हैं? बोले ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं, रात के की मर्यादा है हमारी, लेकिन हम मारना नहीं चाहते, नहीं प्रेशराइज हुए, नहीं हुए प्रेशराइज। अब उनके मन में क्या करुणा नहीं थी, प्रेम नहीं था, वात्सल्य नहीं था, आत्मीयता नहीं थी, क्या नहीं था, सब था, लेकिन सिद्धांत के उत्तुंगता को, ऊंचाई को उन्होंने नहीं छोड़ा। ये प्रेम के साथ उस ऊंचाई पर बने रहना है, तभी उनमें भगवत्ता के दर्शन होते हैं। वही भगवान महावीर की तरफ जब हम देखते हैं, यदि सुधर्मा स्वामी के साथ चले थोड़ी देर तो वो देखते हैं। एक रेफरेंस दूं आपको कि एक बार नगरी में विराजमान थे प्रभु और स्कंदक सन्यासी, स्कंदक सन्यासी, स्कंदक सन्यासी के कई लोगों के साथ चर्चा चली, और चर्चा चली तो उस चर्चा में उनको कोई समाधान हुआ नहीं, समाधान हुआ नहीं जो शुरुआत में जम्मू स्वामी ने कहा ना, परतीर्थि आय, तीर्थंकर महावीर परतीर्थिक लोगों के लिए भी श्रद्धा के पात्र थे। मैं रुका हूं इसलिए कि हम लोग अपने लोगों के लिए तो भी श्रद्धा पात्र हो जाए। परतिथि आय, स्कंद कानगार कोई जैन नहीं था, उसने दीक्षा सांख्य दर्शन में ली थी, वो परिव्राजक था, सन्यासी था, और उसके मन में आया कि नहीं ये सवाल का जवाब जो है मुझे कोई दे सकता है तो केवल तीर्थंकर महावीर दे सकते हैं। और वहां से वो चलने के लिए तैयारी कर रहा है। अब वो स्कंदक और इंद्रभूति गौतम ये पहले के दोस्त हैं, क्या है, क्या है, हाँ पुराने दोस्त हैं,
अब पुराने दोस्त है तो भगवान महावीर ने जैसे जाना कि स्कंद का अनगर स्कंद संदेश आ रहा है तो इंद्रभूति गौतम को बुलाया है, बोले तेरा मित्र तुझे आज मिलेगा। कौन मिलेगा? तेरा पुराना मित्र तुझे मिलेगा। बोले कौन? बोले स्कंद। अब इंद्रभूति गौतम भी हो जाएगा, फिर इंद्रभूति गौतम को तो बाकी कोई सोचता नहीं। बोले मेरा मित्र हो कि कोई भी हो, वो तुम्हारा चेला बनता है क्या? वो सवाल क्या पूछते हैं कि बोले वो आ रहा है? बोले आ रहा है। बोले आपके पास दीक्षा लेगा क्या? क्या सवाल कही है? सीधा सीधा पूछा कि मेरा दोस्त है। बोले लेकिन दोस्त तो आपके पास दीक्षा लेगा क्या? भगवान महावीर ने कहा हाँ लेगा, अभी ली नहीं उसने दीक्षा, अभी दीक्षा ली नहीं। बोले दीक्षा लेगा वो। जैसे ही इंद्रभूति गौतम को पता चला वो दीक्षा लेने, इंद्रभूति गौतम अपने दोस्तों के स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। किसके स्वागत के लिए बढ़े आगे? स्कंदक सन्यासी। दीक्षा ली है क्या? नहीं नहीं। कल्पे कई नहीं कल्पे पीछे इंद्रभूति गौतम ने भी कई विवेक को नहीं, भगवान महावीर भी अने रोक्यो नहीं, मुझे व्याने उनसे ज्यादा समझ अपना कने आ गए। ये सच ना? और गए इंद्रभूति गौतम उसके स्वागत के लिए गए और आराम से कहते सागयम खंदया सुसागयम खंदया। और उस स्कंद के स्वानकार को भी स्कंद सन्यासी को खुशी हो गई कि इंद्रभूति भगवान महावीर के गंधर होकर के श्रेष्ठतम गंधर होकर के इतने ऊंचाई पर पहुंचने के बावजूद मेरे स्वागत के लिए आए। मुझे तो लगा कि ऊंचे हो गए इसलिए दोस्ती को भूल गए होंगे, मैं तो सामान्य रह गया। और ये हेलो जल्दी बोलो, अपन बड़ा होने के बाद छोटा ने शर्म आवे नहीं कि उसमें शर्म आवे, अरे ये तो कही है पटियाल कपड़ा पहने रोने रख सद कटी क्योंकि हमारा दोस्त है। स्वागत के लिए गए, स्कंद को भी उम्मीद नहीं थी। स्कंद ने कहा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूं? बोले भगवान ने बताया कि तू आ रहा है और उसको लेकर गए भगवान के पास। अब भगवान के पास लेकर गए, उनका सवाल जवाब हो गए, वो सारे सवाल जवाब यदि करूंगा तो तुम्हें सो जाओगे, है ना? तो सवाल जवाब हुए और स्कंद ने कहा कि सद हामी नम भंते निगंधम पावेनम, पति आमी नम भंते निगंधम पावेनम, रोयेमी नम भंते निगंधम पावेनम, एवमेव तहमेयम अवितामेश। जैसे आपने कहा वैसा ही है, जैसे आपने कहा वैसा ही है, मैं आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूं। आहा स्वयं दीवाना पिया मां परिबंधम करे, और वही के वही दीक्षा हो गई। क्या ऊंचाई और क्या सहजता! अठे तो थोड़ी सी वो होशियार बो घर में आ जावे, थोड़ी कमावने लग जावे तो सासू ने तो नौकरानी बनने से रहना पड़े। सासुरी छोड़ो थको बेटो, मैंने सुना है कई बार कोई बेटा यदि ज्यादा होशियार हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया और महीने में 2-3 लाख रुपए लेने के कारण लग गया और बाप उसको कुछ कहने गए, थाने कहीं समझे थे जिंदगी में जितो कमाई हो नहीं वो तुम एक साल में कमा रहे, अक्कल के रखने चुप बैठो। कौन बोलता है? और बेटे के मुंह से बाप को यह सुनने के बाद क्या खुशी होती होगी। लेकिन अयवंता आया तो अयवंता के साथ, अर्जुन माली आया तो अर्जुन माली के साथ, शाली भद्र आया तो शाली भद्र के साथ, श्रेणिक आया तो श्रेणिक के साथ, स्कंदक आया तो स्कंदक के साथ, और इंद्रभूति की ऊंचाई का गए तो इंद्रभूति गौतम की ऊंचाई पर भी। अनुत्तरी मानवासी देवता वहां बैठे बैठे सवाल पूछे तू भी जवाब दे, और वो मेंढक आया तो उसको भी तिरा दिया।
इसलिए कहते कि तीर्थंकर महावीर सुधर्मा स्वामी तो 30 साल साथ में रहे ना, एक एक कदम पर देखा ना उन्होंने कि महावीर क्या है, कितने ऊंचे हैं, कितने ऊंचे होने के बाद भी कितने सामान्य, कितने सामान्य। असाधारण व्यक्ति ने साधारण रहना और साधारण व्यक्ति ने असाधारण होना, स्पेशल ने जनरल होना, जनरल ने स्पेशल, अठे तो स्पेशल होने के बाद तो जनरल होने को सवाल से नहीं उठे। वीआईपी और थे वीआईपी बने थाने वीआईपी सर्विस नहीं मिली। मैक्सिमम ब्लड प्रेशर कितना बढ़े सामान्य आदमी का कि वीआईपी का, धन्यवाद था मुझे, जरा जरा ब्लड प्रेशर बढ़े वैसे का वीआईपी। लेकिन तीर्थंकर महावीर बिल्कुल सामान्य, कितने सामान्य, कितने सामान्य, कितने सामान्य। एक बार उनके ध्यान में आया एक कुंभार है, कौन है कुंभार है, और एक कुंभार जो है एक गौशालों को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है गौशालों को फॉलो करता है, और इसको सत्य का बोध कराना जरूरी है, किसको उस कुंभार को, उसकी 500 दुकानें हैं और वो गौशाला का प्रमुख श्रावक है, और उसको सत्य का बोध कराना जरूरी है। तो भगवान महावीर चलकर गए उसके कुंभारशाला में। अब वो देखता है भगवान महावीर को, लेकिन भगवान महावीर को वंदना नहीं करता, क्योंकि उसकी तो पक्की श्रद्धा किस पर, गौशाला पर। मेरे आचार्य तो वही, मेरे गुरु तो वही है ओ। और भगवान महावीर कहते कि मुझे यहां रुकना है, तेरे यहां रुक सकता हूं क्या। जरा इस संवाद को देखो वाले, एक तरफ तीर्थंकर महावीर है ना, और वो केरी केरी परमिशन मांग रही है, एक कुंभार से परमिशन मांगे कि थारा कने घने कुंभार शाला है, एक जगह में रुक सकोगे, इतना सामान्य व्यवहार कर सकते क्या, इतने सामान्य। हेलो, टिप्पणी नहीं करूं लेकिन टिप्पणी करे बिना रह नहीं सक रही हूं। आप लोगों ने हमको क्या बना दिया पता है आपको, महाराज, क्या बना दिया, क्या बनाया बोलो बोला, भगवान महावीर ने हमको क्या बनाया, भिक्षु थे कि बनायो महाराज। तो महाराज बने पीछे कटे थे बराबर जगह नहीं देखी, जगह बराबर अनुकूल नहीं रही, तो देखो बीच महाराज रुक किसो पार। कल का वो सम्मेलन हुआ, सम्मेलन होने के बाद मैं जा रहा था तो आगरकर मड़ा वाले मेरे साथ बात कर रहे थे, बोले मां सब कही क्या था, नहीं थे तो चर्चा ही नहीं करी साधु समय के, मैं नहीं करूं वो साधु साधु की चर्चा खरूस कोने में, वो फैल मारा करे हे नहीं उन फैलने में पार पड़ने से को बहू मैंने माफ कर सुना है घनी सर बता। अब एक सामान्य बिल्कुल तीर्थंकर महावीर का वो संवाद जब पढ़ता हूं, एक जो उनको मानता नहीं उसके घर पर, वो भी कुंभार, कोई राजा नहीं, कोई श्रेष्ठी नहीं, कोई क्षत्रिय पुत्र नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कुंभार। और कुंभार के आंगन में जाकर के उसको कहते कि मुझे यहां रुकना, तो जगह देता कि उसका रुको बिना जाओ, मना कैसे करेगा, भले इतना बड़ा तेज भी ओज भी मना नहीं कर सका। और फिर वो आए बैठा भाई, इतना तो शिष्टाचार निभाएगा। तो भगवान महावीर उसको पूछते हैं, अरे घड़े कैसे बनते हैं, क्या घड़े कैसे बनते हैं। तो उसने पूरी डिटेल, उसको भी मजा गई बोलने में कि बोले मिट्टी रहता हूं, भिगोता हूं, रोनता हूं, फिर उसको आकार देता हूं, फिर आज में तपाता हूं। तो भगवान महावीर ने एक सवाल पूछा उसको, ये घड़े भाग्य से बने कि तेरे पुरुषार्थ से बने। वो नीति को मानता था, आपको नीति समझेंगे नहीं इसलिए मैंने भाग्य शब्द का प्रयोग कर दिया। ये घड़े बनने थे इसलिए बने कि तूने बनाए इसलिए बने। हेलो, आपने तो बोल दिया,
थे दुई करने जाओ ना, थे दुई करने जाओ, थोड़ी देर में कट जाओ थे, जिससे होने उसे छुईला, अपना करने से कहीं होना लगे, उठे भी चले जाओ ना। पर वो पक्को थोड़ी धारणा थी कि जो होता है वो भाग्य से ही होता है, पुरुषार्थ से कुछ होता तो उसको गौशाला का सिद्धांत याद आ गया, जो होता है वो कैसे होता है, नियति से होता है। उसने कहा नहीं नहीं मैंने कुछ नहीं किया, नियति से हो गया। बोले बहुत बढ़िया बात। बोले कोई व्यक्ति आकर के इन घड़े पर डंडा चलाए तेरे बनाए हुए, तो तू क्या करेगा? बोले पकड़ूंगा उसको, पीटूंगा। बोले क्यों? नियति से घड़े फूटे, उसने घड़े फूटे। जब घड़े नियति से बने तो फूटे भी कैसे है, तो उसको कैसे दंड दे सकता है? उसके ध्यान में आ गया गड़बड़े क्या गड़बड़े। और फिर भगवान महावीर ने उसको समझाया कि शकड़ा ऐसा नहीं है, है ना, पदार्थ में स्वाभाविक पर्याय भी आती है और पुरुषार्थ से भी पर्याय आती है, और तुझे मोक्ष में जाना है तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नियति से मोक्ष मिलने वाला नहीं, मारा भाग्य में विशाल दीक्षा मिला।

तो गोशंगल के समझ में आ गया, शंगल के समझ में आ गया। तो एक बात पक्की भैया है ना, कि उस समय में किसी के समझ में आ गया ना तो वो तुरंत एक्सेप्ट करता था और तुरंत फॉलो करता था। अपनी सबसे सुंदर आदत क्या है, समझ में आए तो भी पूछ नहीं छोड़नी। समझ में नहीं आवे इसी बात को नहीं, समझ में आवे लेकिन छोड़ने की तैयारी, वो शक डालने का, हाँ बराबर बोले आपने जो कहा वो बराबर है, मैं आप आपके धर्म में श्रद्धा करता हूं, मैं आप में श्रद्धा करता हूं, आप मुझे अपना, मैं दीक्षा नहीं ले सकता हूं लेकिन आपका उपासक बन सकता हूं। और शकडाल उपासक बन गया। अब शकडाल की जिसके 500 दुकानें थी उसका नाम था पूरे कुंभार के लोगों में, पूरे लोगों में। अब वो जैसे उसके आजीवक गौशाला के पास समाचार गए, अरे मारो इतो बड़ो श्रावक, उन्हें पार्टी बदल दी, कहीं पार्टी बदल दी, दूसरा पार्टी में चले गए हो। तो फिर गौशाला का आता है उसको वापस अपने पार्टी में लाने के लिए, क्या गौशाला का आता है। अब गौशाला का आता है तो शकडाल उसको सत्कार नहीं देता है, सम्मान नहीं देता है, आदर नहीं देता है, भक्ति नहीं देता है। गौशाला था को भाई हेलो, हाँ मैं कह रही हूं ठाकुर भाई, क्लियर क्लियर बोल रही हूं मैं, प्रूव कर दो मैं थाने, है ना। अब गौशाला पहले महावीर को तो पसंद नहीं करता, लेकिन उसने देखा कि शकडाल तो मुझे वंदन नहीं कर रहा है। फिर वो गीत गाना शुरू करता है भगवान महावीर के, किसके, भगवान महावीर के गीत गाना शुरू करता है। क्योंकि जिसके गीत गाएंगे ना, जो जिसको मानता है उसके गीत गाते हैं तो लोगों को लगता है अरे हाँ हाँ ये मेरे प्रभु को मानता है, मेरे गुरु को मानता है, तो फिर थोड़ा प्रेम हो जाए, है ना। ईसत साले खेल, ईसत साले कोई आवे थक करे, हाँ आचार्य भगवंत ऐसे थे, गुरुदेव ऐसे थे, हम बहुत अच्छे थे, अरे ये अपना गुरुदेव ने माने भला गई गए उनके साथ। वो शकडाल ने भी देखा कि ये मेरे परमात्मा की प्रशंसा कर रहे हैं, पर वो पक्का था। उसने कहा तुम्हारा मैं आदर नहीं करता हूं लेकिन तुमने मेरे परमात्मा की गुण गाए हैं, इसलिए तुमको ठहरना तो तुम्हें ठहर सकते हो लेकिन मैं पार्टी चेंज करने वाला नहीं है। अब एक तरफ मैं बात आपको इसलिए सुना रहा था कि शकडाल जैसे कुंभार के पास महावीर चल करके चले जाते बिना बुलाए, नो इन्विटेशन, इन्विटेशन नहीं, आमंत्रण नहीं, शकडाल ने कोई भावना भी नहीं भाई, फिर भी चले गए। इतना सामान्य तीर्थंकर ने होना चाहिए क्या, इतना चीप होना चाहिए क्या। लेकिन है ना, जब तक गुरुदेव अपने कदमों से जमीन को नापते थे, जब तक गुरुदेव अपने कदमों से जमीन को नापते थे, जहां भी गुरुदेव ने चौमासा किया, गौर नदी तक की बात कर रहा हूं, चौमासे के आखिरी 15 दिनों में निर्वाण कल्याणक होने के बाद गुरुदेव का उपक्रम चलता था, सुबह प्रार्थना करनी और लोगों के घरों में स्पर्शना करने के लिए जाना, एक एक घर परसते थे, कोई घर छोड़ा नहीं उन्हें। नागपुर इतवारी में चौमासा था लेकिन घर परसने के लिए थे गोर्धमान नगर गए, गुरुदेव सदर बाजार गए, और कोई कौन सा घर है, क्या है, कुछ नहीं, बस वो घर है। और उसने बुलाया, कई बार ऐसा भी हुआ था कि गुरुदेव 5 घर आगे निकल जाता था, पीछे ला रहा घर ने याद आती थी, अब हमारा घर तो आया नहीं गुरुदेव, वो जानकर गुरुदेव मारो घर लारे ले गए, चल भाव प्रवीण ऋषि साथे मत कर जो देशो। मैं कल्प वृक्ष को नहीं हूं, कल्प वृक्ष बेचे है ना। इतने सामान्य क्या, इतने झीले किसको मिलते, मुझे नहीं लगता है कि गुरुदेव के दर्शन करने के लिए कभी किसी को किसी के

रह जाना पड़ा। इजीली अवेलेबल, किसी को भी इजीली अवेलेबल। दरवाजे बंद तो गुरुदेव के कभी रहे, कभी आओ कोई आओ। एक तरफ वो ऊंचाई नहीं, एक तरफ ये सामान्यता। तीर्थंकर महावीर को क्यों सुधर्मा स्वामी महसूस कर रहे हैं कि ऊंचाई में तो निषद पर्वत से भी अधिक और विस्तार में सामान्य में तो इतने कि बिल्कुल अर्जुन माली आ जाए तो अर्जुन माली को भी लगे मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ, अयवंत आ जाए तो अयवंत को भी लगे मैं इनके साथ बात कर सकता हूँ, और स्कंदक आ जाए तो स्कंद को भी लगता है कि इनके अलावा मेरे सवाल का जवाब कोई दे ही नहीं सकता है। ये प्रज्ञा जिनकी होती है वो तीर्थंकर महावीर है।

0: ये विरुद्ध हुई है। किसके महावीर है? अपने भी हो जाने नहीं। ये महावीर किसके होने चाहिए? जब तक सुधर्मा स्वामी के, तब तक अपने काम के नहीं। अपने काम में कब आएंगे ये महावीर? अपने हो जाए, है ना। जब तक सुधर्मा स्वामी के रहेंगे तो वो पराय धन है, कहीं वो प्रॉपर्टी किरी है, उरी है, मैं उठे कहीं नहीं कर सकूं। वो प्रॉपर्टी मेरी हो जाए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूं। ये सौरण पक्को ना? तो ये विरुद्धि किसकी होनी चाहिए? अपनी होनी चाहिए। ये विरुद्धि आपके घर की होनी चाहिए। ये विरुद्धि हर व्यक्ति की होनी चाहिए। जब विरुद्धि हर व्यक्ति की होगी तब महावीर उसके काम में आएंगे। ये प्रॉपर्टी अपनी होनी चाहिए। और इस सुधर्मा स्वामी का अनुग्रह क्यों ना अपने अनुभूति के महावीर जम्बू स्वामी के माध्यम से हमको प्रदान करें। और आओ, इस विरुद्धि का अगला अनुष्ठान शुरू होगा 20 अक्टूबर से। ये चलेगा अनुष्ठान 19 अक्टूबर तक। और 20 अक्टूबर से विरुद्धि का अनुष्ठान शुरू होगा। अभी हम विरुद्धि का गान कर रहे, संपुट कर रहे, नॉर्मल लेवल पर। कैसे कर रहे? नॉर्मल लेवल पर। और 20 तारीख से इसका अनुष्ठान शुरू होगा समो शरण में। किसमें? समो शरण में। एक अंदर का समोशरण बना करके, अंदर के समोशरण की रचना कर करके, और वहां प्रभु महावीर के चरणों में बैठ करके प्रभु महावीर की भक्ति करनी। वह अनुष्ठान शुरू होगा 20 अक्टूबर सुबह 7:30 बजे। कितने बजे सर? कितने बजे? कितने बजे? और खाली पेट। कैसे आना? नो पानी, नो चाय, नो डायबिटीज की गोली, नो ब्लड प्रेशर की गोली, नो माइग्रेन की गोली, नो थायराइड की गोली। बोले जो जो बोले, मुझे तो पता नहीं, कोई गोली नहीं। 7:30 बजे के पहले पहुंचना। 7:25 को मैं यहां आऊंगा। 7:25 के 27 के आसपास जो है मंगलाचरण शुरू और समोचरण की संरचना के साथ फिर वो महावीर सुधर्मा स्वामी जो गाते हैं, जो जीते हैं, उसकी अनुभूति लेंगे 21 दिन। कितने दिन? 21 डेज। आग्रह है आपसे, आपके परिवार के हर सदस्य को महावीर से मुलाकात करानी। इस सुधर्मा स्वामी के महावीर आपके परिवार के हर सदस्य के होने चाहिए। उसके दिल में महावीर की प्रतिष्ठा करनी है, उसके दिमाग में महावीर की प्रतिष्ठा करनी है। दिल में प्रतिष्ठा करेगी विरुद्ध हुई और दिमाग में प्रतिष्ठा करेगी उत्तराधीन सूत्र जिनेश्वरी। दोनों में प्रतिष्ठा करने का अनुष्ठान शुरू होगा 20 अक्टूबर से। 18 अक्टूबर की इसकी भक्ति यात्रा निकलेगी, 20 अक्टूबर से शुरू होगा। अब समर्पण चतुर्मास समिति कब डिसीजन लेकर के नाम मेरे पास देती, कब मीटिंग होती है मुझे पता नहीं। बहुत जल्दी कर रहे, टाइम घनो कम रहे, पीछे मीटिंग लेनी, उनकी मीटिंग लेनी। हाँ, है ना, कि मैं पोल्यूशन के पहले से कह रहा हूं ना, इतना बड़े थाने जी से थारा बेटी रे शादी कितने पहले तैयारी करी थी? नहीं नहीं, थारा बेटी रे शादी री तैयारी कितने पहले करी थी? और मेरे विरुद्ध की शादी के लिए बोले करा करा करा करा करा। मैं तो अभी कर दू, मैं तो अभी कर दू, अभी 21 नाम बोल दूंगा मैं तो यहां से। हाँ, नहीं नहीं, वो से है ना। तो ये अनुष्ठान शुरू होगा और आप सभी से आग्रह है, और मैं आपसे बिल्कुल दिल की बात कह रहा हूं, यदि तुम्हारे परिवार के हर सदस्य के दिल में और दिमाग में भगवान महावीर विराजमान हो गए, भगवान महावीर का राज हो गया, तो तुम पांचवें आर्य में भी चौथे आर्य का सुख लोगे। जहां महावीर वहां चौथा आ रहा है, जहां महावीर नहीं वहां छठा आ रहा है, पांचवा भी नहीं कहता मैं तो, कौन सा आ रहा छठो आ रहा है। अभी आपने तय करना है कि चौथे आ रहे में रहना कि छठे आ रहे में रहना, है ना, कौन सा आ रहा है, चौथे आरे में रहना है। तो आरा का मीनिंग होता है कि सब एक साथ रहते हैं, क्या तो मस्त है कि आनंद से आमंत्रण 20 अक्टूबर का, बाकी जो होना है सो होता रहेगा, जो अपने हाथ में वो तो कर लो और फिर करेंगे बिल्कुल। 10 को दिवाली है कि गौतम प्रतिपदा है, 11 को गौतम प्रतिपदा है, और फिर 11 तारीख को जो है, 11 तारीख का इस बार का कार्यक्रम जो है, हाँ लेकिन यहां नहीं करूंगा, 10 नहीं, 10 तारीख का जो कार्यक्रम है वो यहां नहीं करूंगा, बताऊंगा समय पर। अभी बताऊंगा ना तो बाबू सेठ मुझे कन्विंस करने की शुरू कर देगा, मैं जगह उस समय बताऊंगा 20 अक्टूबर के बाद जगह बताऊंगा कि जिसके बाद मेरे साथ बातचीत करने की जगह ही नहीं रही। नहीं भैया वो हाँ बिल्कुल सीक्रेट है, नहीं मैं खुले आसमान में करूंगा, टेंशन उस ले तो नहीं, कोई व्यवस्था की जरूरत नहीं, खुले आसमान में करूंगा मैं बिल्कुल, जो चौराहा है ना चौराहा, नहीं उसके पहले का अपना भक्ति निवास के पास वास्तव है कि वहां बैठूंगा खड़ा रहूंगा तीनों तरफ देखता रहूंगा और मस्ती में वीरथ का गान करता रहूंगा। क्या नहीं वो मैं ठीक भैया, कुछ चेंज करना होता तो कुछ छोड़ना पड़ता है ना, हाँ यस यस यस, खुले आसमान में जाऊंगा तो फिर गेट कैसे बंद करूंगा, ठीक है खुले आसमान में गेट नहीं होते, खुले आसमान में ठेठ होते। अभी उसने कहा पहले बता दो तो पहले बता दिया मैंने, बताने की इच्छा मेरी अब थी नहीं, लेकिन उसने कहा तो उसके बाद मैं मान लेता हूं, वो मेरी बात जल्दी मानता नहीं, नहीं आज्ञा में लेकिन जल्दी नहीं माने, मैं किसी जल्दी मानू सारी बात उठे आश्रय में खड़ो रही हो, मैं मान ली बात, अभी मैंने क्यों अंबर बोला अंबर बोल दिया, मैं बात मानने देर लगाऊंगी नहीं लगा, अरे हाँ भैया लेकिन मैंने बात मानने में देर करी क्या, तो आप भी मेरी बात मानने में देर क्यों करते यार, हम बस बिल्कुल आनंद से। और आज के हमारे लाभार्थी परिवार चोपड़ा परिवार, अब क्या याद दिलाऊं, है ना, हमारे इंदुताई को तो कंटिन्यू याद आता है 2009 का चतुर्मास और उत्तराधीन की आराधना के पहले पूरे अपने सखी मंडल के साथ पूरा परीक्षा बोर्ड धोके निकाला था। अभी इस बार परीक्षा बोर्ड मत धोना, इस बार पूरा नगर धोके निकाल लेना लोगों को, है ना, बहुत बहुत बधाई आपको। और कल के हमारे लाभार्थी विजय जी सार्थक जी मनोज परिवार भिंगर वाले आए क्या, जल्दी से आ जाओ आगे। चरारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साभु मंगलम केवली पन्नतोद मंगलम चरारी लघुतमा हरिहंता लघुतमा सिद्धा लघुतमा साहु लघुतमा केवली पन्नतोद लघुतमा चतारी शरणम भवज्जामि हरिहंते शरणम भवज्जामि सिद्धे शरणम भवज्जामि साहु शरणम भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणम भवज्जामि चार मंगल चार उत्तम चार शरण दुख हरण सुख करण और न शरण कोई जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद।
1: सब भक्तों के लिए एक सूचना है, जो अभी गुरुदेव ने फरमाया था उत्तराध्ययन सूत्र का 20 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। हमारे पास 2-5 नाम ही बचे हैं जिसे भी छूत आराधना के लिए हिस्सा लेना है और उसको लेकर प्रवेश करना है, तो उसका नकरा समर्पण चातुर्मास समिति ने 51,000 रुपया रखा है और वो भी नकरा समर्पण चातुर्मास में यूज उपयोग में नहीं लेने वाले हैं, वो आरंभ विद्या के निधि में जाने वाला है। तो जिसको भी 2-5 नाम बचे हैं, विशेष करके महिलाओं को सूचना करता हूँ कि जिसको भी उत्तराध्ययन सूत्र का लाभ लेना है तो उन्होंने हमारे पास नाम देना।
0: बाबू सेठ, बेटी की नौ की बचकावनी, खुशी की नौ की बचकावनी है
1: आज, खुशी बहन की नौ की बचकावनी है।
0: उगेश उगेश सुरे समर्पण बचकामी तिविहम प्यहरम स्वासनम खैमम सैमम सहस्तांगरेणम महत्तांगरेणम शुभ समय वत्यागरण। ओसरे ओसरे ओसरे, छोटी सी उम्र में गर्मी में नौ उपास की तपस्या करने वाले को, खुशी खुशी तपस्या करने वाले को जयानंद आनंद गाओ चला जया।

कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। हे घोषवाक्य लिहिला है संगीता अकोलकर यांनी। ऐकत रहा रेडिओ नगर 90.4 FM, आवाज तुमचा।

0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया तेरे पीछे दिल ये तबाह हो गया। जी में आता है कि तुझे देखूं भी नहीं, पर क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया है, क्या करूं ये दिल जो फिदा हो गया। आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
1: आएगो आएगो आएगो, ये क्या हो गया।
0: आएगो आएगो आएगो, ये क्या।